0: हमारे नाना नानी हिंदुस्तान से आते हैं लेकिन हम ग्वालूप से हैं हम ग्वालूप हैं
1: احنا غوالوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا نغوالوب
2: غوادالوبي mi segunda tierra mi hogar la patria de mi hijo
3: Guadalupe is my home. There's no place like home. You know, we see DA from Guadalupe. We see Guadalupe from DA. So you see, this country could have been mine too.